0: सूत परम है दूजे लगे जाए जमन बरना हुक्म है पौने आवे जाए।
1: खाना पीना पवित्र है दी तौंद जिक संभाहे नानक।

0: देखे कि तो अपना तर्क चिपकी सारी है, जो आया सो चल सी सबको आई बारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साय मनो विसारी है, अपन थी अपना आपे ही का सवारी है, आपे ही काज सवारी है।
1: हम कुकर

0: एक नहीं दाता पसे जो पाइए नानक साकरमात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित को खसम ना जाए नानक सेवक काटियो जिससे ती।

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरुषा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन। श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग भयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीह कश कही न जाई सोडी सृष्ट सकल तारण का अब गुर रामदास को मिली बड़ाई ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शतर तरे जाकी शोत जगत को लागे तो पर तुही टरे नीच ऊच करे मेरा गोविंद कहू ते न डरे नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे कह रविदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे कह रविदास सुनो रे संत हो हर जियो ते सब सर सुख टल गुर सेविय
अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरशां दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया,

हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण न गवावे। जो किश करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर आपे झगर चुकावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मिले आपे, हर आप

रंग रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जानला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वदाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिस है जत कता

तत महत दिसरा दोय दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाच धर्म दूर करमी आपो अपनी के दू जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते

रंग प्रंग अनेक ना जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब की जान ला, सब किश तेरे वास तेरा कर पला, तेरे घर न

प्रेम सकत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.

सुख रोग पया जा सुखता न होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंतना जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सित सवाल जिन कीती सो पार पया।

कृपा दृष्ट तन जाहे निहरहु, ताके ताप तनक मह हरहु। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सारण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ।

चेतयावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां काल साधी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान पुरसादान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो।

पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दादान खालसा जी नूं बख्शां हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण ने ओटिया दी ओट धन धन श्री

हरे आपे ही मत देवा स्वामी, हरे आपे बोल बुलावा, हरे आपे पंच तत्व विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावा। जान नानक सतगुर मिले आपे, हारे आपे झगर चुकावा। हारे आपे पंच तत्व विस्थारा, विच तत्तु पंच आप पावा। जन नानक सतगुर मिले आपे, हारे आपे झगर चुकावा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सर्वकला भरपूरी से जगत जगत जगत नानक दास विलास आ गए बिनवता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वदे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह हे
1: पौड़ी वड्डी हवंडाया पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक नाजा।

गए मसकत खाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर राम दास राखो सरनाई। सो कह टल गुर सेविया, अहनस सहज दर्शन परसया। गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमी, नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पात सा। मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात सा, सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही सबनांदा। सजन सचा पात सा, सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही सबनांद वेसाहो। सतनाम

राम केसर कुसुम मृग में हरण सर्व शरीर चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करुणा के पट पांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण में हो तेरे नाम निवे रहे लिवलाई।

उद्यम करो उठनीत, हर कीर्तन का अहरो हर देहो हर देहो नानक के मीत। पहले पहड़े पुलड़ा पहले पहरे पुलड़ा फल पी पच्चा रात जो जागन लहन से साई कनों दत। हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिकै बिक खाई माया मो परम पै फूले

उड़ उड़ावा चाटे पाए वेखे लोग हसे कर जाए। रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल। गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरभाओ निरंकार सच नाम जहां का किया सगल जहान। सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ। सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाई पार। कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत अनंत। लाटू मधानिया नंगा पंखी पाउंदियां लैना साह। सूए चाड़ पवाइए जंत नानक पाउंदियां गंत न अंत। बंधन बंद पवाए सोए पया किरत नचे सब कोए। नाच नाच हसे हे चले हे से रोए। उड़ना जाही सिद्ध ना होए। नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ। पौड़ी नौ त्र

साहिब जी गुजरे श्री रविदास जी के पद कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूधता बछरा थन हो बिटारियो फूल पवर जाल मीन बिगारियो दूधता बछरा थन हो बिटारियो पावर जाल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा लचर

श्री रविदास जी के पदे कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दूध ता बछरे थनहो बिटारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो।

बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवें प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जैस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां सह साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड सगया। देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रथ यार आए तो देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा।

आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दरसन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान न्योटिया दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद चौंके आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नूं अपने दरों घरों सिक्की सिदक भरोसा नामदान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवै प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत राहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।

0: जमकर का पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
1: मान सुखाने करे नवाज शोरी बगायन तिन गलताग, तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पे आवे होई सा। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर। मथा टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश धान लै पूज है पुराण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसे ना जाना। देखे चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़े यार। मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन साडा फिटे। तन फिटे फेट करेन, मन झूठे चुली परेन। कहो नानक सच त्याई है, सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी।